एक बारी सारे बोलिए, धन गुरु तेग बहादुर साहब, कितनी सच्चाई प्रगट कीती है पातशाह जी ने, अखीर नतीजे ते पहुंच के आख दे।

साहिब गुरु रामदास साहिब जी भी बचन करते हैं, आख देन ऐ मेरे मन कुछ समझ, जितने तू रिश्तेदार वेख रहे अपने मतलब देखन, जदों तेरे विच खून नहीं रहना, तेरे विच कोई उन्हां दा मतलब नहीं रहेगा, उस दिन तेरे नेड़े भी किसी ने टुकना नहीं। इसलिए प्यारिया जप सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु रामदास साहिब जी आखदे ए जो संसारे के कुटुंब मित्र भाई दी सै मन मेरे ते सब अपने स्वाय मिलासा

माता कहती है मेरा कमान वाला पुत्र चला गया। स्त्री वाल पुट रही है पर गल बन नहीं रही। कबीर जी आख देन कितना ही पै रोन पर वो कम नहीं आउंदे, विचारा मनुख कल्ला ही जा रहे। भगत आख देन देहुरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गए भाई

पुरातन रीत आप दो मिनट लिए भी श्रवण करो और गुरु अर्जुन देव पातशाह जो अपनी बख्शिश कर रहे हैं पंच ताल दी बराबर दी सवारी दी रीत है।

मैं बंदा बेखरीद सच्चा मेरा मैं बंदा बेखरीद सच्चा मेरा जो पिंड सतिसा सब कुछ है तेरा माणा में माणे तू तने तेरा परवासा बिन साचे अंतिक है तो जानू काचा।

जन को सब अपने का तान जो तू करे करावे स्वामी सा मसलत परवा चरण शरण हम अनाथ ना थकन अपनी कृपा करे चरण कमल नानक आला दे किस दिन आम की पत परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी।

करके गुरसूरे हलत पलत प्रभाव सवरे कार्य होए तले पूरे हरा नाम जप सुख सहजे हरा नाम जप सुख सहजे मज्जन होत साधु तुरे आवण जान रहे थित पाई जन मरण के मिटे वसूरे गुरु नारायण दाई गुरु गुर सच्चा ते दिन हार गुर तुठे सब कुछ पाया जन नानक सब बनिहार हर गुण गाओ साफ सफाई हर गुण

एक बारी सारे बोलिए धन गुरु तेग बहादुर साहब। कितनी सच्चाई प्रगट कीती है पातशाह जी ने, अखीर नतीजे ते पहुंच के

साहिब गुरु रामदास साहिब जी भी बचन करते हैं, आखदे ऐ मेरे मन कुछ समझ, जितने तू रिश्तेदार वेख रहे अपने मतलब देखन, जदों तेरे विच खून नहीं रहना, तेरे विच कोई उन्हां दा मतलब नहीं रहेगा, उस दिन तेरे नेड़े भी किसे ने टुकना नहीं। इसलिए प्यारिया जप सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु रामदास साहिब जी आखदे ए जो संसारे के कुटुंब मित्र भाई दी सै मन मेरे, ते सब अपने स्वाय मिलासा, जित दिन उनका स्वाओ होए ना आवे।

माता कहती है मेरा कमान वाला पुत्र चला गया, स्त्री वाल पुट रही है पर गल बन नहीं रही। कबीर जी आखदेन कितना ही पै रोन पर वो कम नहीं आउंदे, विचारा मनुख कल्ला ही जा रहे। भगत आखदेन देहुरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गए भाई लट

इतनियां गलतियां कीतियां पिछले जन्मां विच कि मुड़ के ओही गलतियां इस जन्म विच कर रहे हैं। ऐ जरा रेडियो बंद कर दियो, विच चल रहा है, टेप नूं चलाण तों पहला वेख लिया करो। एक बारी प्यार नाल बोलिए सतनाम श्री वाहिगुरु। पातशाह आखदे पहलां गलतियां कीतियां हुण मुड़ के गलतियां कर रहे हैं, ते दाता जे तू बख्शना है ते बख्श लै, नहीं तां साडे लई तां अगे जुतियां तैयार। पातशाह गुरु नानक देव जी आखदे

सुनता। बिन नेत्रा कहां को पिख है, नाम बिना नर कहीं न लिख है। बिन विद्या कहां को पंडित, बिन अमर कैसे राजमंडित।

अंतिम पातशाह गुरु अर्जन देव जी फरमान कर दे हैं। सासत सिमरत वेद चार मुखागर बिचरे, तपे तपी सर जोगिया तीर्थ गवन करे। खटकर्मा ते दुगुणे पूजा करता नाए, रंग न लगी पार ब्रह्मता सर पर नरके जाए। राज

बहुत धनाढ्य अचारवंत शोभा निर्मल रीत मात पिता सुत भाइया साजन संग परीत लश्कर।

तप मेरा अंतर जामी जामी तप मेरा अंतर जामी जान तप मेरा अंतर जामी जान तप मेरा

अचल अविनाशी, सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी, जिस मृत दुर्मत मल नासी, सतगुर चरण कमल रित धारण, गुर अर्जन गुण सहज विचारन, गुरु

धागड़ी धर्म दृंग धागड़ी धेम धरना धागड़ी धर्म दृंग धागड़ी धेम धरना धागड़ी धर्म दृंग धागड़ी धेम धरना तद्र दानी दानी तुम दानी तालल तुम धरना तद्र दानी दानी तुम दानी तालल तुम धरना तक तक तक तक धली कर धली कर तक धली कर तक त्राम तद्र दानी दानी तुम दानी तालल तुम जरना संगीत भजन प्रिया छंद जागड़ दंग नागड़ दंग बागड़ दंग बाजे गागड़ दंग गाजे महा गाजे गाजे कागड़ दंग तीरंग तो कंकड़ा कंग कागड़ दंग काती कटारी कड़ाकंग दिरना दिरना दिरना।

तो हम तक सीखने हैं अपनी मन भी मत में त्याग दे। अगर अपने आप में सोचते हो कि सियाने हो तो वो एक गलत फहमी है। फिर महाराज जी क्यों करिए, दसों क्यों करिए? तो कहेंगे गुरु की मत तू ले आने। हम साथ संगत गौर न सुनो, इसे शब्द महाराज जी ने वर्त्या है ए आने।

सुखमी साहब जो महाराज जी ने उचारी थी कि सुखमी साहब जो लफज इयाने जरा उन्होंने निके जहे न्याण जो 65 साल की उम्र में शब्द उन्होंने लिखा थे उन्होंने बेचारे भोले पालन के समझ नहीं सियाने से इयाने कौन हैं इयाने वो हैं जिन्होंने पास सियाणक नहीं है पर उन्होंने वहम है सियाणक का जो ग्रोन न्याणे हम उन्होंने आता है ग्रोन न्याणे जो ग्रो हो गए हम लेकिन हम हाले न्याणे ही अते मनवे भी नहीं हम कि अभी हाले न्याणे हैं वो तो कोई कोई गुरकित अजिहा होता है जो आखे हम बार क्यों गुरकिता हैं जो मत समझाए गुरु पिता है अभी बालक हैं हाले लेकिन कौन कौन प्यार है कि अभी बालक हैं घट इंसान कहता मैं भी बच्चा समझ दो मैंने न्याणा समझ दो मेरे तौले आ गए हैं तो मेरी तुम समझाने की कोशिश कर दो जिस तरह के तौले आगे नाल अकल आती है वह तो कुछ संबंध ही नहीं उसके नाल साथ सिंह जी हूं तक आप जी ने यह सुनिया है गुरु बाबा जी का सुनेहा कि अपनी सारी मत अपनी सारी सियाणप क्योंकि साढ़े पास नहीं है छड़ दो तो कहते हैं गुरु की मत को ले आने आने गुरु की मत लै क्योंकि भगत बिना बहुत डूबे सियाने बहुत बड़े बड़े सियाने जोड़े हैं वो गुरु की मत तो बिना भगती नहीं आती बिना भगती तो बहुत व्डे व्डे सियाने जो हम वो अपनी सियाणप के बीच ही डुब जाते हैं अपनी सियाणप के बीच ही डुब जाते हैं इस करके प्रेम नाल आओ इस पंक्ति में गाओ उपरंत अगे चल देना।

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਪਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਖੂਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤਮਾਮ ਅਕਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਉਹ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਆਪਣੀ ਓਰਿਜਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਆਪਣੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਆਹ ਹੁਣ ਪੰਕਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੂਲ ਨਾ ਬੂਝੇ ਆਪਣਾ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆ ਕੇ ਢੋਰ ਦੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਆਪਣੀ ਓਰਿਜਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਹਨ ਅਤੇ ਢੋਰ ਗਵਾਰ ਹਨ। ਮੂਲ ਨਾ ਬੂਝੇ ਆਪਣਾ ਸੇ ਪਸ਼ੂਆ ਕੇ ਢੋਰ ਦੀਏ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਫਰਕ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰਲੀ ਸੰਸਾਰੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ, ਆਪ ਪਛਾਣੋ ਤਾਂ ਕਹੋ ਜਾਣੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਹਿਰੇ ਬਨ ਖੋਜਣ ਜਾਈ, ਸਰਬਨ ਵਾਸੀ ਸਦਾ ਲੇਪਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ, ਬਹੁਤ ਮੱਧ ਜੋ ਬਾਸ ਬਸ ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਖਾਈ, ਕੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ ਘੱਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਭਾਈ, ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਏਕੋ ਜਾਣੋ, ਇਹ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਟੇ ਨਾ ਪਰਮ ਕੀ ਸਾਈ। ਇਹ ਪਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਟਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮ ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਵ ਹੋ ਕੁਛ ਹੋਰ ਅਤੇ ਸਮਝੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰੱਜੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰੱਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਅਕਲੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਇੰਡ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੌਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਇਹ ਹੁਣ ਨੁਕਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਸਕੂਲ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਿਖਾਲਦੇ ਹਨ ਇਹ ਗੱਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਹਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਬੋਲੋ, ਸੁੱਚਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੁੱਖ ਬੋਲੋ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚੁੱਪ ਬਚਨ ਬੋਲੋ,
महाराज जी बाबा जी थां थां ते कहंदे हन मरना याद रखी। ब्रिदा मंडप माल न लाए, अपना चित मन इन्हां मंडपां नाल इस दुनियादारी दे माल नाल ना लगा। ते की कर, मर्ग सताणी चित कर। मर्ग सताणी, सताणी दा पाप बहुत शक्तिशाली। मर्ग माने मृत्यु, मृत्यु जो कि बहुत ही शक्तिशाली है, उन चित कर, उन याद दे विच रख, चित दे विच रख। गुरु महाराज जी बाणी च आखदे हन, इह तृष्णा वड्डा रोग लगा। साथ संगत ध्यान अपना फोकस करके रखो, क्योंकि मैं कहना आप इसकी सुन सुन के बाद कर जाओ, तो कुछ आज गलबात करो, क्योंकि सुन के आए हाँ फिर उसमें बैठ के विचारो, उसका कोई नोट भी लाओ, ताकि मैं दसा दिन के बीच असि कुछ अचीव करना। बाबा जी बाणी च आखदे हन, इह तृष्णा वड्डा रोग लगा, मरण मनोविकार। मरना मनोविकार दिता, खाना पीना हसना सौना विसर गया है, मरना कहते इसमें मरना बिल्कुल विसर गया, मरना बिल्कुल विसर गया, इसमें मरना भी कहते मरना याद रखो। गुरु बाबा जी अपनी बाणी दे विच आखदे हन, मौत में याद रखो। कहते हैं मत्ती मरण विसारे, एक दुनियावी वस्तुओं दे विच मत्ती मैंने मस्त होई हुई, इस जीव जिंदड़ी ने इस मत ने की कीता है, मरना मनोविसार है, मत्ती मरण विसार है। खुशी कीती दिन चार, चार एक दिन की खुशी कीती, इसने बिल्कुल ही भुला दिता कि आ जिहड़ा मेरा जीवन है ये तो एक बुलबुले तो ज़्यादा वध के अहमियत नहीं रखता। जैसे जलते बुदबुदा उपजे दिन से नीत, जब रचना कैसे रची कौ नानक संगीत। असि इस पानी विच जो बुलबुला होंदा है उस तो वध के कुछ नहीं है। कई बंदे कह देंगे हम यू डोंट नो मी, हम कई बंदे ये गल कह रहे हैं कि तुहानू मेरा पता नहीं है, यू डोंट नो मी। महाराज जी कहते हैं हाँ सानू तुहाडा पता है, सानू पता है तुहाडा कि तुसी कौन हो। एक पानी के बुलबुले तो वद के कुछ नहीं है, वो तुम तो कई गाँव से यू डोंट नो। असं कह दें कि यू डोंट नो, महाराज जी कहते हाँ सानू पता है तुसी कौन हो। दुक्का अस्त रक्त प्रेते चाम, इस उपर में रखो कमान, हड्डियां लहू नाड़ियां पिंजरा मिर्च आज ये गंदगी का एक फैला है, इस उत्ते मान करते उत्ते कहते मैं तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हाँ, वो कहते सानू पता है तुम कौन हो। बाकी किसी कहते कि तू पता नहीं कि मैं कौन हाँ, वो कहते पता है, जन्म जन्म की इस मन को मन लग गई अंदर, सुधा मैल ही मैल है और कुछ नहीं, मैल ही मैल। असं कह दें कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हाँ, वो कहते पता है कौन हो, सबको भरिया फूक, हमने भी फूक न सारे भरे गए, वी नो यू। बाबा जी कहेंगे मैं नहीं कह रहा था। गुरु बाबा जी कहते असं एग्जैक्टली जानते हाँ कि तुम कौन हो, हमें भी फूक के नाल भरे पे, हड्डियां बिस्ता मास लहू नाड़ियां का एक पिंजरा हो, पिंजरे का इतना भी परिभाषा नहीं है, क्या परिभाषा इस पांडे का, इतना को लागे ठनका, इतना को ठनका लगे तो ये सुख सकता है, मुड़ के द्वारा ये जुड़ता नहीं। इस करके कहते मौत में याद रखो, मौत में याद रखोगे तो तुम्हारी अटैचमेंट जो है अपने आप नाल, अपने तन नाल, अपने बाकी तमाम चीज़ों के नाल टुटन का तोड़न का जीवन वैराग पैदा करन का एक ही साधन है कि मौत में याद रखे। जो मौत में याद रखेगा उसके भी ही जिंदगी दे विच फर्दर सवाल आएंगे कि मौत तो बाद की होगा, फिर मैं की बनागा, अदरवाइज एक क्वेश्चन पैदा नहीं होगा। तो गुरु की टीचिंग के दूसरा पॉइंट यह आता है कि मौत में याद रखो। हम मैंने दसो ये मत कितने मिलती है, जो मिलती है तो दस दिए, कोई यूनिवर्सिटी लॉ के कोर्स के मेडिसिन के कोर्स के होर किसी कोर्स के सिखाते हैं कि मरना भी याद रखो, बिल्कुल
सत्य है गुरु की मत, जो असेंशियल चीज़ा गुरु की मत में सिखा लिया जाए हैं वो दुनिया की किसी भी होर मत के दायरे के आदि ही नहीं, होर बहुत कुछ है। गुरु महाराज सिखा दिन सादा रहो सादे रहो, ये कौन सिखाता है कि सादे रहो। साड़ियाँ लाइफ के अनुभव सोफिस्टिकेटेड हैं, बड़ी कॉम्प्लीकेटेड हैं, बड़ी लग्जरियस हैं, करके एक्सपेंसिव भी हैं, एक्सपेंसिव होने करके स्ट्रेसफुल भी हैं, बहुत सारी एंग्जाइटी का कारण बन गई हैं। और महाराज जी कहते सारे का सारा अवॉइड किया जा सकता है जस्ट बाय लिविंग सिंपल जीवन की है। हम उसकी मिसाल सुनो, कबीर साहब का श्लोक है सिंपलिसिटी उसे, कहते कबीर सूप खाना खिचड़ी या मैं अमृत लोन, कहते मेरे लिए खिचड़ी ही जरा है वो बड़ा खूब स्वादला खाना है जिसे सिर्फ लून ही पाया है तो अमृत वर्गा उसका स्वाद है ना, तो बनाने में चिर लगे ना, उस दे नाल फैट प्रॉब्लम होवे ना, उस दे नाल कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम होवे ते ना ही उस दे नाल ग्रोसरी का बिल वधे। कहिंदे खूब खाना खिचड़ी जां मैं अमृत लोन, ना ही वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, जेरा रोटी कार नहीं गला कटावे कौन, जेरा रोटी कहिंदे मास वाली रोटी नहीं, चला मुर्दार ले आओ उन्हें छिलो उन्हें बनाओ घर का वातावरण जो है वो मैला करो, फिर जिन्होंने अब खावे वो कदे सामू नहीं खाने, कुदरत के ऐसा निजम नहीं है जो कर्म करोगे उसका फल उसे तरह भुगतना पाएगा। क्योंकि हीरा रोटी कारण है स्वाद के बदले मैं किसी जीव का लिया के गला कट दिना हाँ तो उस कर्म का कोई नतीजा नहीं निकलना, उस कर्म का भी तो नतीजा निकलना है। कहते कौन निकल गए स्वाद के बदले अपना गला कटवावे, कबीर साहब का श्लोक है हेरा रोटी कारण गला कटावे कौन, कहते मेरी ऐस इन्नी स्वाद की गल बदले मास, हेरा रोटी का मतलब होंगे मास वाली रोटी, कहते मास वाली रोटी के बदले इन्नी गल बदले कौन अपना अपना बंदा गला कटा है। कहते मेरे लिए सादी सिंपल खिचड़ी ही अमृत वर्गी है, इतों भाव है सादा खाओ सादा जीवन जियो, यह है गुरमत की सिक्ख्या गुरमत की टीचिंग। फिर फरीद साहब बाणी चाहते हैं फरीदा बुरे का भला कर गुस्सा मन ना हंडाए, जिहड़ा पहले ही बुरा है जिहड़ा पहले ही बुरा है उसको होर बुरा बनाना है, उसका बुरा करके तुसीं होर बुरा बना दो, बुरा होने के नाल वो अपनी आत्मा का नुकसान कर रहा अपने जीवन का नुकसान कर रहा अपनी मत का नुकसान कर रहा अपने जीवन में तबाह कर रहा बुरा होने करके, होर की बुरा उसका करना है, होर उसका बुरा की करना है, अगर होर तुसी उसका बुरा करने लग पे तो फिर उस नाल भी ज्यादा बुरे हो गए। फिर बुरे का भला कर गुस्सा मन ना हंडाए, हुण ए बहुत मुश्किल गल है गुस्सा मन ना हंडाए, कौन नहीं चाहता कि मैंने गुस्सा ना आए, पर गुस्सा सानू सबना नहीं आ जाता, ये है गुरमत की तालीम, गुस्सा मन ना हंडाए देही रोग ना लगे पल्ले सब कुछ पाए। क्योंकि अगर तू इन्हीं की गल्लां कर लें कि तू देही दे अनेक रोगों तो बच जाएगा, क्योंकि बहुत सारे रोग सिर्फ पैदा ही गुस्से करके होंगे हैं, पैदा ही इमोशनल प्रॉब्लम करके होंगे हैं। तो साथ समझिए अगर आप जी के सामने मैं दो किस्म की मत अलग अलग करके रखी है, मन भी मत जी सामने इधरों उधरों मिली है अभी असं उसमें मत समझी बैठे हैं, अपने आप में अकल वाले आके मत वाले समझी बैठे हैं, कदे सवाल नहीं किया क्वेश्चन नहीं किया शक नहीं की कदे ये सोचा नहीं कि मत कितने लई भी है या वैसे ही कितने आ गई है, नहीं मत सानू आई नहीं असं वड्डे जरूर हो गए हैं, मत सानू आई नहीं असी मत वाले होने का भरम जरूर कर लगते हैं, मत सिर्फ इको ही ढंग दे नाल आंदी है गुरु की मत तू ले आने सब बिना बाजू देखा, जितनी देर तक गुरु तो असी मत नहीं लेंगे फिर वो इंसान अपनी जिंदगी का हर बोल
हर कर्म, हर सोच ओ सोचे, ओ करे, ओ बोले जो गुरु की मत के नाल बिल्कुल मिलती हो, जो गुरु की मत के विचों हो, वो कह सके आ मैं जो बोल रहा ये मेरे बाबा जी के वचन हैं, उन्होंने जो बोल रहा ये मेरे अपने नहीं हैं। मैं मस्कत एक जगह कीर्तन पर गया, उस कीर्तन के बाद एक सज्जन कह लगे भाई साहब मैं आप जी के नाल एग्री नहीं करता, डिस एग्री करता। वैसे भी जितों तक मैंने याद है कीर्तन के दौरान मैं एक लफज भी अपने कोलों नहीं किया, जो कुछ अपने लफजों किया उसू गुरबाणी दंक्तियों के नाल कोल सी। पहला मेरे ध्यान गुरबाणी की पंक्ति होंगी है, फिर मैं कोई गल आखना है, तो सारी तो गुरबाणी ही बोली गई है। तो जो आप जी डिस एग्री करते हो तो बाणी नाल करते, मेरे नाल नहीं करते, क्योंकि मेरे पास तो मत है ही नहीं, मेरे पास अपनी कोई सियाणत नहीं है, कोई मत नहीं है, मेरा अपना कोई ओपिनियन नहीं है। जो भी आखता हाँ वो गुरु बाबा जी की पवित्र पावन बाणी के विचों आखदा हाँ, तो वह गुरु बाबा जी की मत है। आओ अपने जीवन अपनी मत को त्यागीए, गुरु की मत को लियाइए। गुरु की मत को लियान के नाल जीवन स्वाद आता है, अपनी मत के नाल जीवन के फिक्कापन आता है। वो मैं पंक्ति कह के समाप्त कर लगा हाँ। कहते हैं लाले गोले मत खरी, जिहड़ा गुरु का लाला गोला दास है सेवक है उसकी मत से है सोने वर्गी खरी, क्योंकि गुरु की मत नीची, नीची का मतलब बहुत अच्छी, क्योंकि उसके पास गुरु की बहुत अच्छी मत है। ऑन द कॉन्ट्रेरी लाले गोले मत खरी, गुरु की मत नीची साची सुत सुहावनी, उस गुरु के दास की सुरती जड़ी है बहुत सुहावनी है, बहुत टिकी हुई होगी होगी। मनमुख मत टिकी, तो जो मनमुख है उसकी मत टिकी होगी, और जिसे मत टिकी है उसे सारा ही जीवन टिका होगा, जीवन का हर एस्पेक्ट जो है वो टिका होगा, देश लक्ष होगा, देश ज्यादा होगा। उनकी किस्मत बचनी, हाले मेरी पूरी जो है वो जब तक की थकावट भी नहीं उतरी, पर अगले सूचना में आप जी की सेवा जो है वो होर भी गुरु बाबा जी अपनी आशीर्वाद दें तो उसके नाल की जा सकेगी। समय से रोजाना शाम के दीवान चाहना इसे तरह इसे विचार भी जो है लड़ी चलती रहेगी। तो अभी इन्होंने दसा दिनों के बहुत सारा गुरु बाबा जी की मत का जो खजाना है वो एकत्र करना है। आप वो अपने नोट्स बनाया करो, जाके आपस में एक दूसरे के नाल इस विचार की सांझ पाया करो, ताकि असी इकट्ठे रल के ग्रो हो सकीए। तो आस्ट्रेलिया के दसवें कीर्तन के जो लगे हैं तो साड़ी एक किस्म की इनवैसटमेंट हो गए कि इन्होंने दसा दिनों के असी कुछ प्राप्त किया है। यही कुछ समा प्यार संगती मंगाओ उपरंत समाप्त।